0: का काम है वो सारा इस न्यूक्लियस का है कि किसी चीज से कोई और बढ़ा देना। हमारे पास विटामिन के नहीं है तो विटामिन सी से आगे सिंथेसाइज कर देना, वही काम जो विटामिन के को करना है वही काम विटामिन सी से ले लेना। इसी तरह ही कैल्शियम है और अलग अलग चीजों से सिंथेसाइज कर देना, उसको बनाने का जो काम है वो भी इस न्यूक्लियस का ही होता है हमारे शरीर में। और अगर न्यूक्लियस काम ना करे तो फिर जितनी भी कमी पेशी हमारी खुराक में रह जाती है ना, वो पूरी की पूरी बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि आयरन कम है तो आंखें पीली हो जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे, लाल नहीं रहेंगे, चेहरा पीला हो जाएगा, इस तरह की कंडीशनें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम अगर कम है तो किसी और चीज से तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा काम नहीं कर रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम टीथिंग की बात कर रहे तो मैंने ये आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम कहीं से ज्यादा ले लिया जाता है, खुराक में अब उतना आ नहीं रहा, दूध ही देना है बच्चे को, दूध में पूरा कैल्शियम पूरा हो नहीं रहा, तो फिर क्या है, कुदरत आंतरियों से कैल्शियम निकाल लेती। अगर वो आंतरियों से कैल्शियम निकाल के दांत बनाना शुरू कर देगी तो फिर आंतरियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे को टट्टियां लग जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। इसी तरह ही अगर उसने कहा कि नहीं आंतरियों में भी इतना है नहीं, तो फिर वो हड्डियों से निकालेगी, जो हड्डियों से निकालेगी कोई दांत तो बनाना ही है, आगे काम तो चलना ही है, जो नई रेलवे लाइन बिछानी हो तो बिछानी ही है, तो अल्टीमेट हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो बच्चा अभी चलने लगा था, जो बच्चा अभी टेबल के साथ स्टैंड खड़ा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो मतलब ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है असल में इसका काम क्या है। तो ये सभी चीजें जो शरीर में हमारी खुराक के जरिए नहीं जा रही लेकिन उनकी जरूरत है, और उनकी जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, टू सिंथेसाइज, किसी न किसी और चीज का जुगाड़ बनाकर उन चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ये सब काम जो है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस का, ये बात हमने आप सब लोगों को बता दी थी। और बड़ी बात मैंने बताई थी कि डीएनए इसमें होता है डिसऑक्सीडाइज न्यूक्लियस होता है जो हमारा कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है, और इसकी भी डिटेल मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जब माँ और बाप के स्पर्म और ओवम मिलते थे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक एक क्रोमोसोम से सैकड़ों ही जीन्स थे, और हरेक जीन्स का अपना ही कैरेक्टर था, वो अपनी ही खासियत थी उसमें। और जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है वो पूरा बराबर बांटा जाता है ताकि जितने भी सिबलिंग्स हों, बहन भाई हों, उन सब में पूरी तरह उस तरह माँ बाप का कैरेक्टर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ गुण, कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती नौटी हो जाते हैं, कुछ वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन दूसरे में उतने ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक जीन्स का अपना अपना करेक्टर है। एक एक बच्चे का कद लंबा हो गया, एक बच्चे का कद छोटा रह गया, तो किस बात का ये है कि वो जो जीन्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स के ऊपर जो प्रोटीन की कोडिंग होती, जैसे आप बाजार में सामान लेकर आते हैं ना तो वो चक्री सी बनी होती है लाइनों की, वो उसमें उसको स्कैन करते हैं तो पता हो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है। ठीक इसी तरह का पूरा ढांचा जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई, इसके अंदर का जो फ्लूड है, जितनी भी चीजें इसमें तैर रही होती हैं या जितनी भी चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं आगे रिकॉर्ड के लिए या आगे पेश करने के लिए या आगे डिवीजन करने के लिए या ट्रांसमिट आने वाली जनरेशन को देने के लिए, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का भी काम वही जैसे साइटोप्लाज्म का था, एक अलग ही एनवायरमेंट है, एक अलग ही तरह का माहौल है, जेली लाइक ये होता है और इसी में वो सब चीजें तैरती रहती हैं। अगर ये खराब हो गया तो वो पूरी चीज खराब हो जाती है। इसी तरह ही हमने इसका मेन फंक्शन जो आपको बताया था कि एक तरह का स्टोर हाउस है, जितना भी रिकॉर्ड है हमारी पुराने फोर फादर्स का, उस सब को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा होता है, और जैसे ही आगे नई जनरेशन बनती है तो इसकी जो डिवीजन है वो इस तरह होती है कि सभी चीजें दोनों आगे आने वाली जनरेशन को बराबर ट्रांसमिट हो, बराबर डिवीजन उसमें हो। अब जो बराबर डिवीजन होगी तो आगे आने वाला चैप्टर वही आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की जिम्मेवारी फिर किसकी है। इसमें तो समान है, इसने तो कहा भी मेरे पास इतना गहना है, इतना डीएनए है, इतने जीन्स हैं, ये सारे ले लो भाई, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा, इसकी बात आज हम इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। और अगर वो डिफेक्ट हो गया तो बेशक बाप ने तो कह दिया कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, इसको भाई बांट लो, और जो बांटने वाला है वो कहेगा किसी को ज्यादा रेतली जमीन दे दी, किसी को रोही भी की दे दी थी, किसी को पूरी जो है न्याय की जमीन दे दी, फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो ये बांटने वाले के ऊपर आएगा। अब हमने ये कह दिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रखता है कि इसके पास क्या क्या है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर ऐसी ना हुई तो उसके लिए मैंने बीमारियों की बात भी आपसे कर दी थी। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां न्यूक्लियस की बीमारियों की वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जिसको मैंने अल्जाइमर या पार्किंसन कहा था, या एलएस का एएलएस कहा था, और ये सब बीमारियां जो होती हैं, इनकोऑर्डिनेशन कहा था, ऑटोइम्यून डिजीजेस कहा था, ये सब पैदा होने वाली चीजें हैं। खास तौर पर इनका संबंध पिछली जनरेशन से होता है, और इसी की वजह से ये सब आगे वही न्यूक्लियस डिफेक्ट रहा, वही आगे ट्रांसमिट हुआ, फिर आगे आने वाली जनरेशन को उस तरह की बीमारियां हो सकती। तो ये मैंने शॉर्ट में आप सब लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी मैंने डिटेल में आप सब लोगों को समझाया था कि भाई ये एक तरह के रॉड्स टाइप होते हैं, एक तरह के एनर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक तरह बिजली घर होता है, जो बिजली पहुंचाएगा तो सभी मशीनरी चलेगी, सभी कुछ अंधेरा दूर होगा, काम चलेगा। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमारी सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं है इसलिए मोटर चल नहीं रही। तो वही काम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया था, और इसका काम ज्यादातर इफेक्ट ब्रेन पे होता है अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल ना हो, क्योंकि पूरा संचालन हमारी बॉडी का होता है वो ब्रेन से होता है। ब्रेन से नर्व्स इश्यू होती हैं, और वो जो रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, और अगर ब्रेन में ही इसकी कोई कमी पेशी रह गई, क्योंकि सेल तो ब्लड में भी है, सेल तो बॉडी के भी है, सेल तो हरेक अंग के ही है, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हर एक सेल की अंदर की कारकर्दगी जो भी करना है उसको नॉर्मल चल सकता है, नहीं तो अंधेरे में तो कोई काम नहीं ना होगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था लिवर के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारी इंटेस्टाइन्स के जितने भी कारोबार चलते हैं, अगर उनमें समझ कर लो कि लाइट ही नहीं है तो सारे के सारे काम जो हो पीछे रह जाएंगे, रुक जाएंगे। और अंदाजा लगाइए कि अगर ब्रेन के कारण काम रुक गए तो बड़ी बात हो जाएगी, डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता ना, बिजली इंटरकरंट आती, कभी आगे चले गई, आगे चली, इस तरह की कंडीशनें होती हैं, तो उस तरह की कंडीशन में क्या हो, एपिलेप्सी वगैरह की बीमारियां आ जाती है। मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, कोई कनेक्शन ढीला होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसी तरह से दिमाग के अंदर, जो सेल के अंदर जितने भी इस तरह के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी उसके डिवीजन होती हैं, उसके हिसाब से ये बिजली सप्लाई करता है, और इसकी बिजली सप्लाई करने से ही दिमाग काम करता है, बिजली सप्लाई करने से ही मसल मांसपेशियां काम करती हैं, और अब मांसपेशियां या किसी अंग ने काम नहीं, हार्ट ने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है, चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया, फेफड़ों के अपने माइटोकॉन्ड्रिया जिसको लाइट करनी थी, वो मोटर चलानी थी कि पानी निकले, उसे काम करना था कि फेफड़े सांस ले पाए, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें इसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी, स्ट्रोक, सीजर के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सीजर केवल एपिलेप्सी के नहीं होते, बहुत तरह के सीजर होते हैं, लेकिन हाँ जितने भी सीजर्स आते हैं जाते हैं या जर्क है बॉडी के एकदम जर्क, कई लोग सोते सोते भी एकदम जर्क मारना शुरू कर देते हैं, या कई बार काम करते करते जाग नींद नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन एकदम बांह झटक जाती है, टांग झटक जाती है, ये सब इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इसकी वजह से होती है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा। इसकी स्ट्रक्चर की बात भी मैंने आप सब लोगों को बता दी थी, और ये भी मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर भी एक लेयर, डबल लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब उस साइटोप्लाज्म के एनवायरमेंट में रहते हुए उससे सेपरेट रहते हैं, क्योंकि इनका अपना किला होता है, इनकी अपनी चार दीवारी होती है, वो डबल लेयर दीवार होती है। जैसे सेल का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो रॉड टाइप है, ये रॉड टाइप होते हैं, वो ये भी डबल लेयर्ड होते हैं, और ये रोशनी देने का या एनर्जी देने का काम करते हैं, और इस रोशनी से, इस एनर्जी से हमारे शरीर का जो पूरा काम है वो उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। और पक्की बात होगी कि इसका काम क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस करना, और इसी से सभी चीज को रेगुलेट करना, इसी से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, आवाजाही, लेना देना जितना भी है हमारे शरीर का। अब मान लिया जाए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लोगों को कब्ज हो जाती है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं तो किसी को डायरिया भी लग सकता है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही, चाहे अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये इसी की वजह से है कि करंट नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भाई इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शन का भी पता लग गया। और ये भी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, वैसे ये मैंने कही है, रिपीट कर दूं कि जितना गार्बेज बनता है ना सेल के अंदर, सेल मरते हैं डेली रोजाना, कुछ सेल मरते हैं कुछ सेल नए पैदा होते हैं, क्योंकि रूटीन है बोन्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनमें सेल बन ही रहे हैं, रोजाना बन रहे हैं। और एक सेल की उम्र कितनी है, 120 डेज, 120 दिन के बाद जो आज सेल बना है उसको मर जाना है। और डेली सेल बनते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, हर 6 साल बाद वो जो मेंबर है बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं और दूसरे रिटायर होते रहते हैं। इसी तरह ही ये जो सेल डेथ है ये एक नॉर्मल कर्म है, आदमी को जो बना है उसको मरना ही है। इसी तरह सेल के अंदर भी वो सेल की जो डेथ है वो होनी ही है, और जो उसका गार्बेज बनेगा बाकी सारे, जिसको हम जो तीसरे पाशा की तरह ये कहते हैं क्या क्या करो उसको फुल हर साल पाने, उसमें जो भी आपका राख हो उसको इकट्ठी कर लो और चलते हुए पानी में उसको डाल दो, ठीक उसी तरह ये जो चलते हुए पानी में डालने वाला काम या उसको बर्न आउट करके शरीर से सेल से निकालने वाला काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है। आजकल तो बिजली के चूल्हे से ही लाश जलाई जाती है, तो ये बिजली का काम जो करने वाला है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी ये करता है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह किसी भी चीज को चालू करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आदमी हैं एक दमी, और दम किससे चलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तब हम चल पाएंगे, हमारे अंदर चर्बी फैट जो भी कुछ प्रिजर्व तो रहता ही है ना, इसीलिए बिना खुराक के भी हम बहुत सारे काफी दर्शन सिंह पेरूमान 81 डेज जिंदा रह गया था, बुखार खुराक ही रह गया था। इसी तरह ही हम लोग, हमारे शरीर की जो भी बंतर है इसमें वो शरीर की बंतर के तत्व तो हैं ही ना, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस है, जब ये शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके बनाने वाले तत्व उसके अंदर हैं। और एक एक अंग से जब आप भूख हड़ताल करते हो या जब आप मरण व्रत रखते हो तो एक एक अंग से वो चीजें ली जाती हैं, और लेने के बाद उनको फिर सिंथेसाइज किया जाता है कि शरीर की एनर्जी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सिंथेसाइज होकर जब तक जीवन चलता रहता है बंदा मरता नहीं है। अल्टीमेट जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तब किसी आदमी की डेथ होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि शरीर में मटीरियल तो है, अब नहीं बाहर से खुराक आ रही तो ना सही, लेकिन इसको तो ऑक्सीडेशन किया जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था ऑक्सीजन का कि एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद अगर खुराक दी जा रही है, क्योंकि सभी तो मरण वक्त पे नहीं है ना, खुराक दी जा रही है तो खुराक इस तरह की दी जाए जो कम मात्रा में जाने के बाद भी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके। जैसे जो है ना पानी, वो हर 2-3 मिनट बाद हजम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है। जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3-4 घंटे में हमारे बॉडी से इसका इवेपोरेट होना या कार्बेज के तौर पर, रेक्टम के तौर पर इंटेस्टाइन, लार्ज पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का उसमें चले जाना, ये अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक, जैसे पत्थर के कोले की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि पत्थर का कोला है वो अगर जलता है तो लाल हो जाता है, तो लंबे समय तक वो हीट देता रहता है, और लकड़ी का कोला है तो वो जल्दी बुझ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी हीट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये जो जितनी है, ये जितनी भी खुराक होती है ना, उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। और हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस ये जो हैं, आलू है या सब्जी है या जो भी कुछ खाते हैं, इनकी एक लिमिट है। प्रोटीन की लिमिट इनसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे तक वो हीट उसको रख सकते हैं। तो क्या जब आपको ये लगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रही है या स्ट्रोक हो रहा है या सीजर्स हो रहे हैं या मानसिक तवाजन सही नहीं है, तो उस बंदे को सबसे पहली बात तो ये करो कि उसको खुराक एनर्जी वाली दो, एक्सरसाइज भी करवाओ, एनर्जी वाली खुराक दो। तो एनर्जी वाली खुराक क्या हुई? प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। उसके बाद जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वैसे ये जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको टी के बारे में भी कहा था, हालांकि टी हमारी नॉर्मल खुराक का हिस्सा नहीं है, एक स्टिमुलेटर है कैफीन के तौर पर। और इस तरह की जितनी भी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज पहले दोस्त के तौर पर हमारे साथ चल रही है लेकिन आप दुश्मनी निभा रही। इसीलिए बोलते हैं कि दाना दुश्मन अच्छा जो मूर्ख दोस्त से, क्योंकि मूर्ख दोस्त का कोई पता नहीं कब नुकसान कर दे, और जो दाना दुश्मन है वो उस वक्त वार करेगा जब उसको पता चले कि अब मैं इसका नुकसान कर ही सकता हूँ। जब उसको पता हो कि नहीं इसका नुकसान मैं नहीं कर सकता, तो वो दुश्मनी नहीं जताएगा, वो दोस्ती जताएगा, ताकि इसका भरम बना रहा है मेरे ऊपर, मेरे पर ये शक ना करे। लेकिन जो दोस्त होता है ना, उसका तो पता ही नहीं चलता, उसके पर हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो पता नहीं कब वो नुकसान कर दे। वही बात इस डाइट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग रूटीन में बहुत सी चीजें खाते हैं, कोई बात नहीं, तंदुरुस्त शरीर है, उसको नहीं जरूरत है तो उसको निकाल देगा, टट्टी के रस्ते, पेशाब के रस्ते, सांस के रस्ते, पसीने के रस्ते निकाल देगा। लेकिन अगर वो चीज हमारा शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, तो गर्भ के तौर पर शरीर पर रुक जाएगी और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी जहरीला मादा बन जाएगा। इसलिए क्या करें, खुराक डाइट तो आपने मेंटेन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा करें कि भाई जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हैं उनको एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी जितने भी दोस्त है, कोई बात नहीं भाई, 10 दिन भाई इसके पास नजदीक नहीं आना है, दोस्त है, रोजाना चाय पीते ही है, नहीं गुजारा होता, लेकिन एक बार उसको अलग करके देखे कि होता क्या है, मुझे इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही चीज, मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, अगर नहीं जरूरत तो फिर अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना। कोई भी चीज जो जबरदस्ती आपसे काम करवाती, चाय जबरदस्ती हमसे काम करवाती है ना, क्योंकि हम सुस्त होते हैं तो चाय का पी लो थोड़ी चुस्ती आ जाए, तो जबरदस्ती हमें उस तरफ लगाती है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल दे, उसके बाद जितनी भी दवाइयां, जितनी भी एंटीबायोटिक, जितना भी ऐसा कुछ खा रहे हैं, एक बार उसको स्टॉप करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की वजह से क्या क्या चीज हमारे शरीर में बीमारी के तौर पर बढ़ रही है या कम हो रही। ऐसे होता है कि लोग बड़े लंबे समय से, हमारे गांव में हम देखते थे कि लोग बीका सोन के कैप्सूल खाए जा रहे हैं, लगातार ही खाई जा, जरूरत है नहीं, लगातार ही खाई जा रहे, और डॉक्टर के पास उनको तो पता नहीं है कि बी कम्प्लेक्स जितना बॉडी को चाहिए वो उतना रख लेगा, बाकी पेशाब के रस्ते जल्दी खारिज हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, और डॉक्टर को वो कंप्लेन कर रहे कि डॉक्टर जी मेरा पेशाब पीला था। अब डॉक्टर क्या समझे इसको पी लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी ये है कि जितनी भी खुराक के तौर पे तत्व आप ले रहे हैं, शरीर के अंदर दे रहे हैं, उसको भी एक बार अलग करके देखें, फिर उसके बाद उसकी खुराक निर्धारित करें, और ये देखें कि पहले वाली जो चीज जा रही थी उसके ना जाने से शरीर में कोई कमी पेशी आ रही है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फालतू हम ले रहे थे ना, और जितनी भी चीजें फालतू हम ले रहे हैं वो टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ज्यादा बोझ ना डालें, जितनी रोशनी की जरूरत है यार उतने बल्ब जगाओ, आपका मीटर उतना लोड नहीं ले रहा तो ज्यादा हर जगह जगह रोशनी करने की क्या जरूरत है, जहां काम कर रहे हो वहां रखो, बाकी बंद कर दो। तो ये चीज, उसके बाद मैंने ये कहा था कि CQ10 के नाम पे इस तरह की कंपोजिशन मिलती है, या एल कार्सिटाइन वगैरह के नाम पे मिलती है, या एल सिट्रोलाइन के तौर पे मिलती है, और हमारी खुराक में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, हदवाना है जिसको वाटरमेलन हम लोग बोलते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें आप रूटीन में दे सकते हैं, या विटामिन जो है उस हालात में। यंग एज में मैंने ये कहा था कि विटामिन पर शरीर को मत डालो, अगर बनी बनाई खरीद खीर दोगे तो जिस अंग को, जिस चीज को सिंथेसाइज करना है वो बंद कर देगा कि बनी बनाई खीर मिल रही मैं क्यों कष्ट करूं भाई। अगर जैसे इंसुलिन वगैरह लेनी शुरू कर देते ना डायबिटिक्स वगैरह लोग, और अल्टीमेट वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, कारण ये होता है डे टू डे एडिक्टेड हो जाना किसी भी इंसुलिन का, पेंक्रियास जितना काम कर सकती थी उतना भी नहीं करेगी, ये बनी बनाई मिल रही तो मैं क्या करूं। इसी तरह बहुत से अंग जो एंजाइम तैयार करते हैं वो एंजाइम तैयार नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे, और अल्टीमेट जब वो दवाई आप छोड़ेंगे तो अल्टीमेट आपको बैड इफेक्ट होंगे। इसीलिए बिना जरूरत के कोई भी चीज लेनी वो टॉक्सिसिटी ही पैदा करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां, जब इस तरह का हालात हो, किसी को भी एपिलेप्सी है, किसी को भी सीजर्स हो रहे हैं, किसी को भी डिमेंशिया, डिमेंशिया की पहली स्टेज, जरूरी नहीं कि सभी एकदम डिमेंशिया पे पहुंच गए, डिमेंशिया जो काफी स्टेज है पागल बन की, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, अब आप 70 हो गए, चले जा रहे हो कहीं रस्ते में और आपको याद नहीं, यार पता नहीं कौन सी रोड है, मैं किधर जा रहा हूं, आगे मैं तो घर जा रहा था, ये पता नहीं रोड कौन सी आ गई। रोजाना उस रोड पे आप गुजरते हो, रोजाना जो काम आप करते हो उसमें ही आपको भ्रम हो जाए तो ये समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी लाइट पूरी नहीं दे रही है, तो उसी वक्त आपको फिर ये खुराक बदलनी होगी, उसी वक्त आपको फिर जो दवाइयां खाए, खासतौर पे आजकल हालात क्या है कि जो भी इस उम्र के आम लोग है ना वो कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं, रेयरली कोई होगा वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कभी दवाई ली नहीं। पुराने जमाने में तो बहुत लोग मिल जाते थे जो बोलते थे कि नहीं मैं तो दवाई लेता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी एस्पिरिन की गोली भी नहीं दी। लेकिन अब इस तरह के आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात होगी, तकरीबन कुछ ना कुछ वो ले ही रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाएं जो ये इंडिकेट करें कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त इन सब चीजों को, जो भी आप दवाई के तौर पे खा रहे हो, जो भी आप खुराक के तौर पे खा रहे हो, उसको एक बार सेपरेट अलग कर दें। और खुराक की जरूरत तो है, लेकिन दो क्या, वो जो प्रिपेयर्ड मील है, जैसे मैंने आपको CQ10 की बात की है, जैसे हरदवाने की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की है, इस तरह की चीजें जिनकी हमें रोजाना डे टू डे ज्यादा जरूरत है, वाइटमिन सी और बी के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वाटर सॉल्युबल वाइटमिन हैं, और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन जितने भी हैं ये जल्दी, अब घी फैट है ना इस तरह के जो हैं वो जल्दी खारिज नहीं होते शरीर से, लेकिन वाटर सॉल्युबल हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, जल्दी वेस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाए, चाहे बुखार की वजह से चाहे किसी की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ ही, इवन आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट बढ़ रही है बॉडी की, तो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, साल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त विटामिन भी आपके खारिज होते हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो खारिज होता है वो है विटामिन सी और विटामिन बी। इसीलिए डॉक्टर लोग हरेक बुखार में ये रिकमेंड ही करते हैं कि भाई इसको विटामिन सी और बी वगैरह रेगुलरली देना शुरू करो, और देसी चीजों में हमारे पास नींबू है, हमारे पास ये जो ऑरेंज है, इस तरह की चीजें हैं। और वीकनेस के तौर पर मैंने आपको हदवाने के बारे में कहा था कि हम साधारण बात समझते हैं, लेकिन हदवाना जो है, वाटरमेलन जो है, इसमें एल सिट्रोलाइन नाम का तत्व जो है वो बहुत एनर्जी देने वाला है और बहुत सी चीजें हमारी कवर करता है, थोड़ी क्वांटिटी में भी वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है। तो फिर आपको ये करना है। चलो खैर, ये वो था जो आज से पहले मैंने सभी प्रोग्रामों में हिंदी अंग्रेजी पंजाबी सभी में आपको दोहरा दिया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल गया तो बोल गया, नहीं, जैसे मुझे याद है ना वैसे आप लोगों को भी याद हो जाए कि क्या क्या चीज हुई थी, उसका क्या क्या पर्पज था, और अगर ऐसा पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे क्या करना। उसके बाद और जो ऑर्गेनल्स हैं और जो अंग हैं हमारे इस सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह की कुछ और अंग हैं और चीजें हैं जो सेल के अंदर अंदर घूम रही हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना वो सेल के नजदीक, जैसे क्रॉसिंग नहीं होता, या क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं ना क्रॉस, ये जो क्रॉस की तरह के इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, और इनके ऊपर इसकी निशानी क्या है कि जैसे कांच की दो ट्यूबें हों और उनका क्रॉस बना दिया जी, कांच की ट्यूब में इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, इस ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइट है ना, ये इसके ट्रांसपेरेंट जा रही होती है, और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो आसान समझने के लिए मैंने ये कह दिया कि जो क्रिश्चियन लोग हमारे वो क्रॉस पहनते हैं ना, क्रॉस की तरह अगर दो ट्यूबें आपस में जुड़ी हो, उसका क्रॉस बना हुआ हो, तो इस तरह के ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के ऊपर एक और बहुत बड़ी, और हमेशा हमेशा ये एक जोड़े में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेंट्रोसोम यहां हो गया, एक फिर कहीं और हो गया, एक फिर कहीं हो गया, नहीं, जहां जहां भी होंगे ये जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे, ये इसकी पक्की निशानी है। और इसके ऊपर इसकी निशानी क्या है बाकी के, बाकी इस तरह के और बहुत सी चीजें, जैसे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं इनके ऊपर भी, और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी तरह रॉड के ही होते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या है, सेंट्रोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे आप नाक है ना आपका, मैं बड़ी आसान एग्जाम्पल आपको दूं, आपका नाक है, नाक बैरल है ना, एक ट्यूब है ना, दो ट्यूबें पैरेलल जा रही हैं, और आगे अपनी आंखों का क्रॉस हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक इसी तरह की कंडीशन सेल के अंदर होती है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और आप ये देखते हैं कि नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं, ये जो सीलियाज हैं, ये जो सेंट्रोसोम है इसके ऊपर ये सीलियाज होते हैं, ये इसकी पहचान है। सीलियाज का काम क्या है, जैसे कोई नाव चलती है ना तो चप्पू चलाते हैं ना, पानी को इधर से उधर से इधर से उधर से मारते हैं, इनका काम है इन सेंट्रोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, ये बेड़ी एक नाव की तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है, जैसे जैसे भी होना है वो नॉर्मल काम इसका हो, इसको हम एक तो इसका दूसरा नाम है फ्लाजिला, सीलिया, जैसे मछली बछड़ी की पूछ होती है ना उसको फ्लाजिला बोलते हैं, उसके ऊपर एक झालर सी होती है, ठीक इसी तरह की इसकी आम तौर पे जो कंडीशन होती है इसको हम सीलिया या फ्लाजिला हम बोलते हैं, और ये इन सेंट्रोसोम्स की ट्यूब्स को मूव करने में मदद करते हैं कि यहां काम हो गया मिस्त्री जी, अब तुम वहां जाओ, अब वहां काम हो गया, इस तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर घूमते रहते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि जब सेल की डिवीजन होनी हो तो हरेक चीज नॉर्मल, ताकि जितने भी ये सेंट्रीसोम्स हैं उनकी डिवीजन बराबर बराबर हो सके, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं अंदर अंग हैं वो बराबर बराबर, ऐसा ना एक बाप किसी के बच्चे अब बाप की जायदाद को डिवीजन कर रहे हैं तो कि ये एक भैंस तेरी, ये एक भैंस मेरी, ये एक गाय मेरी, एक गाय मेरी, ऐसा ना हो कि गाय किसी एक ही तरफ ही चल जाए, भैंस एक ही तरफ चल जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को जो यकीनी बनाते हैं ये बराबर के बराबर वंड करते, जैसे एक लाइन नहीं खींचता कोई आदमी, और ये लाइट वाले हैं, ट्यूब है, ट्यूब क्रॉसिंग वाली है और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बांट जाते हैं कि भाई ठीक है, जिन्हें यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया, सेंट्रलाइज पोजिशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है। और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादातर की होगा, हमारे पास है ना बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरी तो जी किडनी ही एक है, बड़ी ये बात लगती है ना, जब कुदरत ने शुरू से लेकर दो किडनियां बनाई हैं तो फिर तेरे में एक कैसे होगी। या कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक कान है दूसरा कान बाहर बना ही नहीं है, या एक कान बना है ऊंचा है, एक कान नजदीक नीचे है, लेवल से नीचे है। इस तरह बहुत सी विकृति, इनको हम लोग होते हैं विकृति, या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एनोमलीज, इस तरह की बहुत सी एनोमलीज है जो आप आम आदमी सोचता ही नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता, लेकिन आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी ही एक है, दो हैं उसे काम चलता था, उसने कुदरत ने एक ही बनाई है, उसने कुदरत ने नहीं बनाई, ये जो सेंट्रोसोम मैं आपको बोल रहा हूं इसने डिवीजन करनी थी, इसने नॉर्मल नहीं की, या एक तरफ का झुकाव हो गया, सभी जो दूध देने वाली गाय भैंसे थी वो एक को दे दी, दूसरे तरफ उसको दिया नहीं, तरफ भूखा मर रहा है ही कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह की जो कंडीशन है, और या ये काम ऐसा तो नहीं होगा अकेली किडनी में होगा, क्योंकि पूरे सेल के वजूद की बात हो रही है, पूरी बॉडी के वजूद की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ब्रेन भी डिफेक्टिव रह जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का शरीर तो बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है, किसी का आपने देखा होगा कि शरीर छोटा है सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही, हालांकि जो सिर बड़ा होने के और भी बहुत से कारण है, जैसे हाइड्रोसेफल वगैरह की मैंने बात बताई थी, और बहुत सी बीमारियों के बारे में मैंने पीछे प्रोग्राम दिए थे, लेकिन हाँ जब भी इस तरह की किसी अंग में डिवीजन का आप फर्क समझते हो, डिवीजन नॉर्मल नहीं हुई, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि इसका सेंट्रोसोम ने काम पूरा नहीं किया। जितने भी अंदर सेंट्रोसोम थे, जितनी भी यूएनओ की फोर्सेस थी, उसने सीज फायर करवा दिया था, लेकिन उसमें जो सीज फायर गलत हो गया, एक तरफ तो बेचारी ज्यादा डेथ होगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अंगों का छोटा बड़ा होना या किसी अंग का एब्सेंस हो जाना, होना ही ना, जैसे किडनी की बात मैंने की है, या किसी का टेस्टिस ही एक होना, ये तो टेस्टिस की बात तो मैंने याद आ गई तो मैं बोल रहा हूं, कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सातवें आठवें महीने प्रेगनेंसी के दौरान हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो वो अंदर रह गया, लेकिन हमको पता तो चलता है ना कि भाई नहीं वो आना था, ये एंग्वाइनल कैनाल से नहीं पास हुआ, एक तरफ रुक गया, एक तरफ का बाहर आ गया, ये तकरार में बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहे कि इसका टेस्टिस है ही एक, इसका टेस्टिस है ही एक, या किसी लड़की में पैदाइशी तौर पे ओवरी है ही एक, आजकल तो वैसे हालात के तौर पे अगर ओवरी एक निकाल देते तो बच्चे फिर भी पैदा होते हैं, टेस्टिस एक एक होता है तो तभी तो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो काम क्रिया होती है ठीक है कि जो दो महीने में होनी थी एक काम ने करना था, सॉरी एक महीने में करना था वो दो महीने में हो रहा है, फर्क तो इतना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन काम हो रहा है। और ये सब इस तरह की जो डिवीजन होती है ओवरी में, टेस्टिस में, किडनी में, या और जितने भी अंग हैं, अगर वो एक ही अंग है तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का जब मैं कोई नॉर्मल का लफ्ज बोलता हूं ना तो उसका मेरा कहने से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी आपस में एक रेशो है कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा, ये इतना होगा तो ये इतना होगा, हमारी उंगली इतनी लंबी होगी तो हमारा फ्रेंचेस इतना होगा, हमारा रिस्ट इतनी होगी तो यहां से लेकर एल्बो तक ये इतना होगा, ये एक मेजरमेंट। अभी तो मेडिकल साइंस ने इशारे का हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं सारा कुछ कर दिया है कि भाई इतना इतना होगा, लेकिन जब ये चीज ये रेशो एल्टर कर जाए कि नहीं भाई एक बांध छोटी है एक बड़ी है, एक ऐसे ही लगता है कि जैसे अपने शोल्डर के साथ जुड़ी हुई हो, छोटी सी बांध रह जाती है, ऐसे तो मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे हो जाते हैं, इस तरह एक टांग ही छोटी हुई है एक टांग पूरी बड़ी हुई है, इस तरह की जो डिवीजन या इस तरह का जो भी कुछ हो जाता है ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुरानी बीमारियों में कैंसर टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कान छोटा बांह छोटी ये सब चीजें आमतौर पर होनी शुरू हो जाती है, ट्यूमर्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, एक तरफ तो किडनी है दूसरी तरफ ट्यूमर है, किडनी डेवलप ही नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे कारण जितने भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कभी यह समा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, अब तो हम एक एक बात जो है पेट की जानते हैं और उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे पहले पता कर देते कि कैसे, और यही चीजें हम लोग पहले जरूरत बीमार होने से पहले, जरूरत पड़ने का मतलब बीमार होने से पहले, आजकल हम लोग जान लेते हैं कि इसके शरीर में किस किस चीज की कमी, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात मैंने आपसे कही है, और अगर टेस्टिस हो ही ना, एक पैदा हुआ वो तो टेस्टिस में आ गया दूसरा बने ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं जिनका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है इस बॉडी में इस सेल में वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरी की पूरी डिवीजन नॉर्मल आगे नहीं बना रहा, तो उसके बाद इसी के साथ मिलता जुलता एक सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, है तो वही इसी का हिस्सा, सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, डिवीजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन और ब्रीक डिवीजन करनी, आपने कभी लड़कियों को वो चादरें निकालती थी ना, फूल बूटे बनाती थी या दरियां बुनती थी, वो आप देखा होगा आपने, बहुत से सुनने वाले लोगों ने ऐसा पुराने जमाने, अब तो करती नहीं है लड़कियां, अब तो पढ़ाई से उनको खूबसूरत ही नहीं होती, पहले जमाने में तो दाज में जो लेकर जाना है उसने जो जितनी चादरें बनाई है, जितने सिरहाने बनाए हैं, उनके फूल बूटे निकाले हैं, यही सब दाज में उसको लेकर जाना होता था, यही सब करता था कि ये लड़की कितनी मेहनती है और आगे जाकर घर को कैसे बनाएगी, इसी से ये सब जाना जाता था। लेकिन एक सेल में ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक तो सेंट्रोसोम की बात मैंने बता दी कि जैसे क्रॉस है इस तरह का लेकिन बना हुआ पाइपों का, जैसे कांच की पाइप होती है ट्रांसपेरेंट पाइप हैगी है, डबल गुलाई वाली हैगी है, और उसी तरह की इस क्रॉस टाइप का ये सेंट्रोसोम्स होता है, इसके साथ मिलता जुलता और ब्रीक डिवीजन करने के लिए, और ब्रीक डिवीजन करने के लिए आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सिलाई करती हैं ना, मैंने बड़ी बारीकी से चीजों को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बताता था ना मेडिकल क्लासों में पढ़ाता था तो मुझे ये चीजें, इसीलिए मेरे स्टूडेंट मेरे से इस बात के लिए खुश थे कि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, ये भूलता नहीं है, हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे। तब मैं जैसे सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूं तो ये इस तरह के हैं बारीक कि जैसे लड़कियां सुई से वो धागे गिनती है ना, इतने धागे निकाल कर, या स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर की गिनती के इतने कुरे निकालने हैं, इतने कुरे के बाद ये डालना है, इतने कुरे के बाद ये करना है। उसी तरह ही ये जो सेंट्रीओल्स है ना, ये डिवीजन को और एक्यूरेट बनाता है, डिवीजन को और एक्यूरेट बताता है। एक तरह का स्टोर हाउस इसके पास है कि भी मैं बांटूंगा, मैं चीजें बांटूंगा, भाई डिवीजन हो रही है सेल की, होनी ही है, तो मैं इन चीज को बराबर बांटूंगा, तो इतनी बारीकी से बांटूंगा कि भाई जितने इसके तंद हैं या इसके रेशे हैं ये इतने इधर चले गए, इतने इधर चले गए। वही एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी कि लड़कियां जब सिलाई कढ़ाई करती हैं या दरियां बुनती हैं तो फिर वो रेशों की गिनती करती हैं, वो धागों की गिनती करती हैं, और धागों की गिनती करके फिर उसको वहां से निकालती हैं ताकि इतने बराबर इधर रह जाए, इतने बराबर इधर रह जाए, तो लगेगा कि जो फूल मेरा बन रहा है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज बनेगा, जहां मैं चाहती हूं वही बनेगा। तो इसलिए सेल के अंदर डिवीजन, जो हर हालत में 120 दिन के बाद सेल को मरना है, नए सेल को आना है, या एक सेल से अगर नए सेल की डिवीजन हो रही है तो उसमें जो भी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बराबर आने चाहिए। और अगर वो बराबर आएंगे, कैसे आएंगे? एक तो पहले हम सेंट्रोसोम बोल दिया कि भाई हम रास्ते में यूएनओ की फोर्स हैं, हम खड़े हो गए हैं, इधर आपकी फौज है, उधर आपकी फौज है, हम खड़े हैं, अब सीज फायर हो गया है। लेकिन गिनती तो नहीं ना हुई, अभी इंसाफ तो होना बाकी है ना, अभी कैसे होगा ना। तो वो है हमारा सेंट्रीओल्स, वो गिनती है सिलाई की जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि बिल्कुल बारीक रेशे हैं, जैसे कपड़े के रेशे होते हैं ना, ताना पेटा जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह की वो डिवीजन करने वाले ये सेंट्रीओल्स होते हैं, और काम इसका भी वही हो गया। और ये लोग जो हैं, इनके साथ साथ एक और चीज चलती है, वैक्यूल्स उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी खाली खाली स्टोर डब्बे नहीं होते हैं कि ठीक है भाई कोई चीज जो आटे वाला है वो तो आटा रख दिया, जो नमक और दानी है उसमें नमक के और मसाला मिर्ची रख दिए हैं, कुछ बर्तन हमने खाली रख लिए हैं कि अगर कोई चीज और बढ़ गई तो उसको कहाँ डालेंगे। इस तरह कुछ एक चीजों को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए, और जितने भी फूड स्टफ्स आ रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पेशली प्रिजर्व करके रखने के लिए कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल करेंगे। आप देखें ना, कई लोग बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम वैसे तो बोलते हैं फैट रेजिस्टेंट सेल डेवलप हो गए हैं और उनमें बहुत मोटे हो रहे हैं। भावे रोटी एक ही खाते हैं, चपाती एक आधी होती है, लेकिन फिर भी वो मोटाई में मोटे हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं रोटियां से पांच सात खाते हैं फिर भी दुबले पतले हैं। तो ये सब वैक्यूल्स जो होते हैं, हमारे खाली पांडे खाली बर्तन होते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा चीज को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। जो भी चीज सेल डिवीजन के हालात में बच गई है कि इसको क्या करें भाई, इसको ठीक है ऐसे है कि इसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी, जब देखेंगे कि भाई डिवीजन करते करते इसको गाय भैंस ज्यादा चलेगी, इसको गाय भैंस कम चलेगी, ये जो स्टोर की आसमान है उसको दे देंगे। तो इसी तरह जितने फैट या और चीजें जो प्रिजर्व बॉडी में हो जाती हैं, जो जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, उन चीजों को कहाँ रखा जाए? वेस्ट में भी नहीं निकल रही, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, तो सेल के अंदर जो रहती हैं, वही मैंने फैट का ओबेसिटी का आपको ये दिया कि इसकी जो बॉडी में ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं जो प्रिजर्व करने की जरूरत है, और उसके लिए कुदरत ने वैक्यूल्स छोड़े हुए। इसी तरह ही इसमें एयर बबल्स होते हैं, जिसमें हवा स्पेशली रहती ही है कि भाई अगर कहीं सांस लेने की दिक्कत आ गई तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। इसीलिए कई बार नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, तो कुछ समय के लिए हम गुजारा कर सकते, नहीं तो उसी वक्त ही मर जाए। नहीं ना मरते, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर प्रिजर्व्ड एयर कुछ ना कुछ रहती है, पर उसकी लिमिट कितनी है? 3 से 5 मिनट की, इतना ही होता है। और क्योंकि फिर सेलों का आपस में लिंक टूट जाता है, एक सेल से उधारी लेनी मुश्किल हो जाती है, तो ये सब सारा इस तरह काम चलता है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और अंग है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब भाई ये पूरा कुछ मैंने बता दिया भाई, ये खुराक जाएगी अंदर, ये ऐसे सिंथेसाइज होगी, इससे प्रोटीन बनेगा जी, उसके बाद ये जीन्स क्रिएट होंगे जी, डीएनए क्रिएट होगा, आरएनए क्रिएट होगा, ये प्रिजर्व किया जाएगा, ये करेक्टर प्रिजर्व कर लेंगे, सब कुछ तो मैंने बता दिया। लेकिन जो खुराक आई है यार, हजम कैसे होगी? हम कहें कि हमने रोटियां खा ली, अब मैंने तो आप सब लोगों को बताया है कि कैसे कैसे डाइजेशन का सिस्टम चलता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह में सलाइवा आता है जिसको हम टाइलन बोलते हैं। टाइलन का काम कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम खुराक में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, यही तत्व है ना हमारे, चाहे साग में हो, चाहे घी में हो, चाहे किसी में, असल में जो चीज अंदर जा रही वो वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही सब चीजें जा रही है। और इन सब चीजों को हजम करने के लिए अलग अलग पदार्थों की जरूरत है, और वो जो अलग अलग पदार्थ हैं, उन सब चीजों को पैदा करना, प्रिजर्व करके रखना एक और अंग, ड्रम है हमारे पास। ये ड्रम की शक्ल के होते हैं, गोल गोल होते हैं, और बर्तन है समझ लग कर लें, इनमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, भूख लगी ना, पेट आपर के खा लिया ज्यादा, अच्छा भाई वो हाजमे की गोली ले लो, वो चूर्ण ले लो। तो चूर्ण का मतलब क्या होता है, हम लोग इस लाइसोसोम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर जितना भी एंजाइम्स भरा है वो निकालो, ताकि ये जो चीज मैंने खाई है हजम हो जाए, उसको हजम करने के लिए ये तुम्हारी जरूरत है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह के पैकेट हैं जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और पूरे शरीर में मुंह से लेकर नीचे तक ये पूरे पूरे शरीर में इसी तरह ही हैं, हर एक सेल का एक पार्ट है, कि जैसे मुंह में मैंने आपको बताया ना टाइलन है, तो मुंह में टाइलन जितनी भी है उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाते ही, ब्रेड खाई आपने, आलू खाया आपने, ये जाते ही यहीं से मुंह से एक हजम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लाइसोसोम्स के हैं, नीचे जाएंगे स्टोमक में जाएंगे तो वहां पर HCL पैदा होगा, वहां पर पेप्सिन पैदा होगी, इसी तरह ही आगे जाएंगे तो बाइल आ रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हर एक तरह की खुराक के तत्व को हजम करने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया है कि इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी। वो सब चीज प्रिजर्व कहां है, वो रखेगा कहां, उसके लिए वो बेचारे पेसारी की दुकान में देखो ना, अलग अलग खाने बने होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। इसी तरह ही कुदरत ने बाकी तो सारा कुछ कर दिया, न्यूक्लियस का भी काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कर दिया, सेंट्रोसोम का भी कर दिया, सेंट्रीओल्स के बारे में बता दिया, वह कुछ खाली खाने हैं, ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी है, वो सारा कुछ तो हो गया, फैट के ग्लोबुल्स चल रहे हैं वो भी हो गया। लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स भरे हैं, साडा चूर्ण हमारा ये जो चूर्ण है ना, वो चूर्ण इसी में है कि किसी चीज को हजम करने के लिए कोई चीज पदार्थ चाहिए तेज करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक चीज को खाने के बाद हजम करने का मतलब ये है कि उससे एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से वेस्ट बाहर निकलता है, खून में जाता है, खून अलग अलग सर्कुलेट करता है, उसके मुताबिक उसका वेस्टेज निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लाइसोसोम हमारी आखिरी बात मैं समझता हूं आज के इस लेक्चर की है कि भाई कुदरत ने हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लाइट रोशनी भी है, सामान सारा रखा हुआ है, लाइट रोशनी भी है, उससे चलेगा तो काम होगा, और ये सब चीजें जब जब ना हो, बोलते हैं ना अब मैंने खाना खाया तो यहीं रुका हुआ, हजम ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या खा, रोटी तो एक ही मैंने खाई थी, कुछ ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, बार हजम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास लाइसोसोम्स की गिनती कम है, उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें वो चूर्ण नहीं है जिससे जो आपने खाया वो हजम हो जाए। परेशानी से आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है, इसका काम है खाई हुई खुराक को हजम करना, उस तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोटीन खाए, अंडा खा लिया है ना, तो अंडा आम रूटीन में टाइलन तो इसको हजम नहीं ना करेगी, तो इसके लिए अलग तरह की कुछ और चाहिए ना, तो सेलों के अंदर लाइसोसोम्स में वो चीज भरी होगी जो इस अंडे को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, फैट को अमाइलेज में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अब ये खून में मिलने योग्य है, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, फैट सीधा घी तो हमारे खून में नहीं ना जाएगा, किसी और शक्ल में जाएगा ना। तो उसको उस शक्ल में लाने का मतलब है हाजमा। किसी भी खाई हुई रोटी को सब्जी को हाजम करने की नौबत तक ले जाना, इस तरह उसको कन्वर्ट कर देना कि अब ये खून में शामिल होने लायक है, हो सकती है, मिक्सअप हो, ऐसे नहीं अलग नहीं होगा। इतना पीस दिया हमने इसको, इतना इसको रगड़ दिया है कि अब इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे हमारा ब्लड है। और ये काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स है, इसको मशीन समझ लो, रगड़ने वाली मशीन समझ लो, या इसमें समझ लो कि किसी चीज को गोलने, असल सल्फ्यूरिक एसिड है तो किसी के ऊपर डाल दो तो वो गल जाएगी। हाँ जी, सो ये सब चीजें आज का प्रोग्राम, मैं समझता हूँ मेरा टाइम हो गया और ये सेल को हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम से कि अब शरीर जवान हो गया है, अब ये बेचारा इस एनवायरमेंट के हवाले से, इस खुराक के हवाले से, अपने तरीका का रहन सहन के हवाले से किस किस हालात का सामना करेगा। बच के तो आ गए हम, बड़ी मुसीबतें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सारा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है कि और लोग भी सुन लें। इतनी हमदर्दी आप उनसे करें, मेरे से तो नहीं, उनसे हमदर्दी करें ताकि वो भी सुन लें और उनकी भी जानकारी में वादा हो, हम उनकी भी सेहत अच्छी रह सके, अपनी सेहत का बचाव कर सके। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं श्रोतियों, सुनते रहा करो प्रोग्राम, बहुत इंपोर्टेंट डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुंदा, और अपने साथियों दोस्तों भैन भरा तुसी घर दे विच ला के फोन उच्ची आवाज दे विच सारा परिवार बह के सुन सकते हो और इहदे विचों बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मिलते हैं जी फिर, थैंक यू
0: जी, सत श्री अकाल।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल।

0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: हेलो
0: हेलो हेलो,
2: प्रोग्राम कर रहे हैं
1: जी।
2: हेलो,